और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ शेर और कुछ कवाली गीत से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और जो जॉनी कहते हैं कान खोल के सुन लिए हमारे मौसी लोन और हमारे भौजी लोन कहते हैं दिल में बहुत दर्द है डॉक्टर के पास गया। जी हाँ हमारे प्यारे और प्यारे दोस्तों कहते हैं दिल में बहुत दर्द है डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने गर्लफ्रेंड को हमारा फ्रेंडेन को कमी बताई। और क्या बताए दोस्तों आप खुद ही सुनिए कि अगर जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ोगे सोच समझ कर करोगे तो कौन सा तीर मार लोगे हमारे दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी और कवाली से भी आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। आओ सुना जाए और ये है परमाश्री मन्ना देई आशा भोसले फिल्म का नाम है बरसात की रात और मधुबाला भारत का ये फिल्म है ना तो करवेटे की तलाश है और ये पुरानी गीत है। आओ मिलकर सुना जाए हमारे प्यारे दोस्तों।

ना तो करो की तलाश है मन रे अशवोश्री का, ये गीत वे फिल्म के नाम है बरसात की रात मधुबाला और भारत का ये गीत है। दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ शायरी सुनाएंगे और कुछ चुटकली शायरी आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। दोस्तों कहते हैं माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, शादी कर लिए जिसे हमने वो तो निर्धन नारी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कहते आजकल के जमाना में कितने लोग हैं जो बहुत टिकटॉक पे जाते हैं, कितने लोग भैया फेसबुक पे जाते हैं, कितने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कितने लाइव बातें करते हैं और क्या क्या होता। तो सबके लिए एक शेर हम यहां से कह देते हैं कि तो टिकटॉक के रानी, अरे टिकटॉक के रानी तू है, टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, मिलाना है तो व्हाट्सएप पे आ जा। जी हाँ दोस्तों, जब मिलना है तो जॉनी के व्हाट्सएप पे आ जा। और दोस्तों और यहां से हम कुछ प्यार भरे गीत आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते बीबी भी हक की आग जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है भैया। और चलते हैं फिर मिलोगे कभी, कभी फिर मिलोगे ये रात फिर ना आएंगे। और ये गीत है आशा जी के और परमा श्री मोहम्मद रफी और विश्वजीत का फिल्म शर्मिला टैगोर जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और फिर मिलोगी कभी, और ये रात फिर आएंगी, ये रात फिर आएंगी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी कुछ चुटकुले यानी फनी शेर, कुछ हंसमुख फनी शेर आज सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत। खूब ठीक से सुनना दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत, पलट कर उसने जवाब दिया जैसे बनमाश तेरी सूरत। और दोस्तों ये सब प्यार भरी बातें आज क्यों हम लोग के बताते हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। ये तो सच बात है ना दोस्तों, आप सब कुछ वादा कर सकते हैं लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका आपको और हमें मालूम नहीं है, तो वो वादा तो आप कर नहीं कर सकता है ना दोस्तों। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, जमीन मिले तो बंजर और आदमी मिले तो खंजर। तो हम जाते हैं दोस्तों मेरे पैरों में आम घुंघरू बांधो, फिल्म के नाम है सुंगरुस नई खतीन अख्तशस्त का, जिसमें दिलीप कुमार ने परमा और खन्ना ने काम किया है, परमा शिन मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

0: और मेरे पैरों में क्या बांधेंगे भैया, हड़कड़ी नहीं बांधना, और जब बांध दो घुंघरी तब नाच के घुंघरू हम सुनाएंगे कि हम क्या और कैसे नाचते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं कि पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल क्यों और मिले, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ता कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। नौ के रसराज कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल कोई और मिले हमें तो ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। तो ये सब बात है दोस्तों। और कहते हैं मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, हट हो गई जब जब मैंने देखा वो मेरे 5 रुपया के पेन भी ले गई। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और ये भी गीत है, और ये है गाम, और ये है मुकेश का और नैतिक लता मंगेशकर का ये गीत है। धीरे धीरे बोल कोई, जोर से ना बोलिए नहीं कोई सुन ना ले, और जब कोई सुन ले तब बप्पा मारी, तो जोर से ना बोलिए धीरे से बोलिए
1: सुनना।

और धीरे धीरे बोल, अरे धीरे धीरे बोलियो, नहीं जब कोई सुन ले तो बप्पा मैया मारी, और अगर सुन लेगा भैया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे कि कहते हैं किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपने, इतना ढेर आदमी भैया जो बर्बाद करी से यहाँ बताई से, किस किस का नाम ले अपने बर्बादी में, बहुत लोग आया देने दुआएं मेरे शादी में। तो जितने लोग आए थे दुआ देने को शादी में, वो सब भाग्यदार है दोस्तों, यहाँ पे बताए गए उसके बर्बादी में। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, दिल में तो होती ही नहीं होता, तो साला टूट का से टूट कैसे जाता है। तो दोस्तों तीसरी कसम की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी कसम एक फिल्म है, वो है नई खती शस्त्र शस्त्र के, और वो है मैथिली मुकेश ने इस गीत को गाया है, और ये बहुत पॉपुलर गीत है दोस्तों, कोई ज़माना में अभी तक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि इसको हम चला देते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, अभी बताएं थे ना दोस्तों, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं मत भूलना, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, और क्यों, क्योंकि कुछ रिश्ता जिंदगी भर याद आते हैं। और हम चलते हैं इस गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

और सजनरी और झूठ मत बोलो, और ये झूठ बोलना कभी कभी लोग को ये धंधा हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ गीत में बताए गए है कि झूठ मत बोलो, अगर जब झूठ बोलेगे भैया तो कौआ काटेगे। और माइती मुकेश इस गीत को आपको सुनाए हैं, फिल्म का नाम है चीसरी कसम, फनी खती होंद इनसेसन सस्त। दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बताते चलाते हैं, बढ़ाते हैं, कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं, ये ग्रुप है नवाबों का, यहां कोई किसी से काम नहीं। ये भी कोई एक शायर है दोस्तों, कहते हैं रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, दिल में ख्वाबों का कमी नहीं होती, हम चाहते हैं उनको अपना बनाना, पर उसके पास अपनों को कमी नहीं होती, वो हमें चाहते हैं ने भैया, तो हम ईटा मार के पत्थर चलाकर और क्या करेंगे। तो ये बात होते हैं, और मोहब्बत करने वालों को और मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को सेवा कर। दोस्तों आप लोग बैठक गाना में ये गीत सुना होगा, कितने लोग बोले योकर ऐसा गाना है, योकर ऐसा गाना है, लेकिन आज हम आप लोग को एक ओरिजिनल गीत को सुनाएंगे जो नाइटिंगेल लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं, और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरी आंगन की नीखतिन अख्तन जीवन तक का। और कितने हमारे सूरीनाम के कलाकारों इस गीत को गाए हैं, और अन्य देशों के कलाकार भी इस गीत को गाए हैं, और जिसको मालूम नहीं है तो वो बोले वो रमिया गाई से, वो रमिया नहीं दोस्तों, ये गीत हमारा दीदी स्वर्गीय और हमारा लता जी नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये गाया हुआ गीत जो आज हम आप लोग को ओरिजिनल सुनाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए।

छाप तिलक सब छीन ली और मुझसे नैनाल मिलाई के। और दोस्तों उसी दिन से व्हाट्सएप से हमें नफरत हो गई। आप जानते किस लिए ना? ये व्हाट्सएप तो आज पूरा दुनिया में चलते दोस्तों, और कहते हैं उसी दिन से व्हाट्सएप से नफरत हो गई जब बाल कटवाते के लिए आदमी ने चंदा मांग लिया। ये कौन सा बात है दोस्तों? और उसके बाद हम चलते हैं प्यार भरी बातें और प्यार भरी गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों, और सुनाता ही रहेंगे। हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है वो भी है नाइटिंगेल लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है, और ये मूवी के नाम फिल्म के नाम है असली और नकली। असली और नकली, और ये फिल्म बना है 1962 में, और यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि इस देवानंद ने फिल्म में काम किया है, और कितने लोग हैं जिसका नाम भी देवानंद लोग फिल्म में देखकर धर देते अपनी बेटी को। और

और मेरी जीवन की डोर पर। और क्या हुआ भैया, जीवन की डोर से बांध लिया है। और जीवन की डोर में कौन बांधते हैं, जब किसी से आपको आपसे प्यार हो जाता है और अपनी जिंदगी उससे और चलाना चाहते हैं और कहते हैं ऐ चांद कुछ बेवफाई के, यानी कि टूटा हुआ दिल का शेर हम आप लोग को, जुदाई का शेर आप लोग को हम। और यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ऐ चांद चला जा क्यों आँच है मेरे चौखट पर, ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गई वो शख्स जिसका, छोड़ गई वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझे देखता था, यानी कि

उसका जो लड़की था या लड़का, उसका वो चांद दिखता था, अब वो धोखा से चला गया, तो वो कहते हैं कि ये चांद असली चांद को कहते हैं जो रात को निकलते हैं, कि ऐ चांद चला जा, क्यों आज को क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गया वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझको देखते थे। ये बात है। और कहते हैं कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, इस हाल में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी करीबी। किशोर जी और लता जी का फिल्म का नाम है आसपास, निखिल हंडत एंड एन तख्त का ये गीत है, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा भी इसमें और काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और तुझे दिल में जब हम बन कर लूंगी तब उसको चाभी हम उठाए के बोले पानी में बिक देवे, और जब पानी में हम बिक देवे तो कैसे तू दिल में से निकलिए, ये बात हुआ है हमारे दोस्तों। और दोस्तों ये गीत क्या होगा, और ये गीत है चल चमेली। अरे चल चमेली, और कहाँ चलेगा चमेली, हप्रे बाग में चल। फिल्म के नाम है क्रोधी निखते इन तख्त का, ये फिल्म है, आओ मिलकर सुना जाए।

और चल चमेली बाग में और क्या खाएंगे, आपको तो मालूम है कि मेवा क्या होता है दोस्तों। और लता मंगेशकर और इस गीत को सुनाए, फिल्म का नाम है क्रोधी। और दोस्तों हम कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

तेज है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सुरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है, चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सतो सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला, कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

की में होके और सवार। चलिए, कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवानी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़, ऋषि कपूर, देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेख होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और दिव्या भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है, और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

तेरी कमाल और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है और फिल्म के नाम है राजा मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों। और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे और कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

बोल मेरी तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है, हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन से दी डेंक ए हमारा रेडियो कुछ भले नहीं मीन से आज से अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंटी ऑन लाइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 MHz पर ऑफ नहीं कनाल 8A डीएबी प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहां पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूं दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूं मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूं मैं दोस्तों। और यहां से हमारा प्यार भरी गीतों का और बहार नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो 1963 का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूं और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए है, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहां पर फूल खिलते थे, जहां पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गई है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का शायद।

मैं हर एक पल का शायर हूँ। और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है, और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है। जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है। उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है। दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है। होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं। आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहान प्रोग्राम हमारा चलते हैं और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिस इज गवेल्दिग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरी और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना, ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारी है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्मा श्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फाउन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी हार्टब्रोकन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दोस्त सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकांत से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशी जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं। दोस्तों प्यार का सागर फनी कति होंदत एन एनन सस्तक आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरे गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है। और

मेरे पास रहेंगे क्या? कुछ यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक हम एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जाने को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

में और तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। फनीकत होंद द्रियन सस जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग्स हम आपको सुनाया है।

मित्रों, जब सूर्य देव पृथ्वी पर अपनी महिमा फैला रहा है, तब पृथ्वी पर लगभग सभी जीव मौज मस्ती करते हैं और मनोरंजन की तलाश में रहते हैं और दूसरों से ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे की तलाश करते हैं। लेकिन प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो फिर मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि अकेले तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन साथ मिलकर हम जश्न मना सकते हैं। मैं अकेले मुस्कुरा सकता हूँ, लेकिन साथ मिलकर हम हंस सकते हैं। प्रिय साथियों, यही मानवीय रिश्तों की खूबसूरती है। क्या ये ज्यादा अच्छा और आरामदायक नहीं होगा अगर हम सब मिलकर इस महामारी की शुरुआत करें? तो कृपया पहले अपने आप से शुरुआत करें।

प्रिय मित्रों, आप अपने नए दिन के साथ क्या करने जा रहे हैं? बेशक जाने या अनजाने में बहुत से उपयोगी और अनुपयोगी चीजें, लेकिन सचेत रूप से अच्छे कर्म करें जो इसे सूरज की उगने की तरह हर्षित और खुशहाल बना देंगे। मित्रों, सुबह की ओस घास पर गिरती है और पक्षी फिर से चहचहाने लगते हैं और उनके लिए एक नया दिन शुरू हो जाता है, और हम इंसान इन सब का पूरा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर दूसरे भी हमारा आनंद ले सकें? लेकिन हम सचेत रूप से अपने मंच पर बहुत सी खूबसूरत चीजें क्यों नहीं आने देते जो दूसरों को सुखी करती है? इसलिए प्रिय लोगों, कृपया अब से सचेत होकर कार्य करें, लेकिन अच्छी चीजें और अच्छे कर्म करें।

साथियों, संतुष्टि निश्चित रूप से एक खुशी देती है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिल सकती है, बल्कि केवल अपने आप में होती है। और यदि आप इसे महसूस करते हैं मित्रों, तो आप दुखी और उदास क्यों महसूस करते हैं? और आप ये खुशी और संतुष्टि ये पेड़ है, क्या आपने पिछले जीवन में अपनी योजना बनाई थी? ये कर्म है जो योजना बनाए थे पिछले जन्मों में, ये कर्म है। इसीलिए इस पर विश्वास करें और इसके साथ जीने का प्रयास करें और अपने शेष यानि बाकी जीवन को कुछ सुंदर बनाएं।

भाई बहनों, यदि हम एक सरल विचार याद रखें तो जीवन अधिक खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है। हमें वो सब नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो सब मिलेंगे जो हमने कमाए हैं। उस पर हम क्यों ना विश्वास करें और बिल्कुल नए और अनुचित तरीके से दूसरों से लेने की राह पर हैं, जहां दूसरों को दुख और पीड़ा महसूस होती है। मित्रों, दूसरों को पीड़ा मत दें। यह याद रखें कि जो आपने बोया है, फिर फसल भी तुम्हें ही काटनी पड़ेगी, और ये बात सब पर लागू होती है, आप पर, मुझ पर, सब पर।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

महालोक की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय। और सुबह हो निकले है तो हम आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी को शुभ प्रभात कहते हुए हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और कहा जाता है कि आज का एक दिन आप एक शुभ दिन हुए। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए।

ईश्वर आपके हमेशा खुश रखे। स्वस्थ रखे और मस्त रखे। सभी दुखों से यही कामना है मेरा भगवान से। जिनका जन्मदिन है उसे बहुत सा बधाइयां दिया जाता है। जिस परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लिया है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दिया जाता है। जो अभी निकलने वाले हैं नौकरी की ओर, उन्हें और शुभकामनाएं। और ये मत भूलना, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ये मत भूलना कि उन्होंने इस बात का संदेश रखे थे कि ये मत सोच कि देश तुम्हारे लिए क्या करते हैं, ये सोच कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। जो सफर पे जा रहे हैं तो उनसे कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना अपना अड्डे पे। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये तो आपको पता है, माँ सरस्वती को भूलना मत, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान देने वाले माँ सरस्वती देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और जो हमारे देश में सफर करने को यानी कि वेकेशन से आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत किया जाता है। सभी मेंबर्स जो है फाहन रेडियो को हार्दिक से अभिनंदन। मैं जो आपके साथ जुड़ गए हैं और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे,

किसी ने अच्छा कहा है कि चलो आज फिर से आओ मुस्कुराते हैं। चलो आज फिर से मुस्कुराते हैं, मुलाकात ना सही दिल से याद तो कर लेते हैं।

आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। कहते कि कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता और इसमें यह भी जोड़ा जाता है कि धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठा आते हैं।

ईरान से और डेन हाग से ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा सुना जा सकता है, जो इस समय अपने गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो उन्हें भी गुड मॉर्निंग। और ये कहना चाहूंगा कि जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है।

और इस बात के साथ में लेकर निकलिए, जिस प्रकार से अनूप जलोटा जी ने अपने आवास में रखे हैं, कीमत कर अभिमान।

मत कर तू अभिमान, अनुज जलोता जी की आवाज में हम सब सुने। सुने वाला इसी प्रकार से और भी सुंदर सुंदर भजनों के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।

और ये बात हम जानते हैं कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। क्योंकि परिवर्तन संसार के नियम हैं।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सुनने वालों इस बात पे हम थोड़ा से जब गौर करें तो अनूप जलोटा जी ने इतना सुंदर रूप से हमें ये संदेश रखे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चंदन और पानी मिलेगा तभी आप टीका और तिलक लगा पाएंगे। क्योंकि उसका मिलाप से जाकर के हम तिलक और टीका लगा पाएंगे और तिलक और टीका का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि क्या आप कहीं सत्संग से आ रहे हैं। जैसे कि श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि रामायण में श्री राम जी रघुकुल का तिलक कहलाए हैं। श्री राम जी जो रघुकुल का तिलक कहलाए हैं, उस पे जरूर गौर करना। तुम चंदन मैं पानी, इसी प्रकार से अनूप जलोटा का और जो सॉन्ग भजन कलेक्शन, एक और गीत एक और भजन जो अनूप जलोटा के हम रखने वाले हैं।

तरह की दिल से लिखी बातें, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाते हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोग से मिलकर जिंदगी बदल जाते हैं।

अनूप जलोता जी की आवाज में हम सब सुने ये सुंदर सा भजन उनके आवाज में। हम अभी न्यूज और कमर्शियल के ओर बढ़ने वाले हैं।

छाछ माखन घी सब एक ही कुल के होकर भी सबके समीप अलग अलग होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सृष्टा जन्म से नहीं, सृष्टा जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपने कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है।

थोड़ा से बदल देता हूँ। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और एक फिल्म जो हम शायद सभी देखे होंगे, फिल्म कुली से निकाला गया ये गीत, सारी दुनिया के बोझ हम उठाते हैं।

इस गीत को मैं इस कारण रखा कि कहीं गलती से आप सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पे ना धल ले। क्योंकि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही के यही रह जाते हैं। क्या यही मेरा जिंदगी है? क्या यही हमारा जीवन है? कुछ ख्याल अपने यारों पे। एक फिल्म याराना जो बनाया गया नई खती नई तख्त

फिल्म याराना से। कभी इस बात पे ख्याल रखे, कभी आज इस बात पे ख्याल रखते कि जो पहले हमारे साथ होते थे प्रिय दोस्त, जो शायद आज आपके साथ नहीं है, पर वो यादगार बनकर साथ साथ है। क्योंकि कहा जाता है हमारे कुछ नहीं बचता, बस वही हमारे कर्म का यादगार के रूप में।

मेरा प्यार। सुनो वालो, ये सुंदर सा गीत एक पुराना फिल्म 1964 से निकाला गया। इस गीत को सुनकर के जरूर कुछ याद आया होगा। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं। गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, पर हमारे दिमाग में जो दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक जिनका नाम पॉजिटिव है और दूजा का नाम नेगेटिव। कौन घोड़े को आप ज्यादा खुराक देंगे उसी ओर के बढ़ेंगे।

तो अपने होते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से और कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से।

सभी को एक सुप्रभात। सूर्य को किरणों जो निकल चुके, मत भूलना सूर्य नमस्कार। और मैं हूं संजय, आपके साथ जुड़े हूं।

कहते कि जी भर के मीठा बोलिए, जनाब रिश्ते में शुगर की बीमारी नहीं होती है। जो अभी चून किए हैं फाहन रेडियो, तो आपको भी हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है।

और जैसे कि कहा गया कि जी भर के मीठा बोलिए। जनाब, रिश्ते में शुगर की बीमारी नहीं होती है, तो अपने वाणी का मिठास डालिए। अगले गीत जो हमने चुनकर रखे हैं,

सुनने वालों, यहाँ तक था हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा यह रखता हूँ कि आपके साथ जुड़े रहे और कुछ न कुछ आपको अच्छा लगे होंगे। और कहता हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज इस खूबसूरत दिवस में स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार हो। आप सभी को एक शुभ दिन पेश किया जाता है। यहाँ से आप अभी का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ और यहाँ से आरंभ करने को जा रही हूँ। आप जरूर से साथ दें और इस भजन माला कार्यक्रम में आप जरूर से आनंद उठाएं, मन को शांति पहुँचाएं और दिन आपका मंगलमय होए। सभी को याद किया जाता है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। हनुमान चालीसा के साथ यहां से आरंभ किया जाता है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम। और देखे तो दनाक से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से हम यहां से श्रवण करेंगे हनुमान चालीसा।

वांचली सा यहाँ से हमने श्रवण की है और वो भी पेश किया गया है देन हाँ से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से। पार ना लगेंगे, पार ना लगेंगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। कमेंट राजसलित देन हाँ से श्रीमती लैना बाबू राम जी की तरफ से।

पेश किया गया है श्री नाम वाले फोर नो मैन का नामों की इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी के लिए पेश कर रहा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, बल्कि दुनिया वाला यानी कि भगवान कमजोर नहीं है, तो बच के। श्राद्ध नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरुबीन के निर्देश में श्रद्धा भक्ति के साथ

तनाख एक नेता श्रद्ध नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देश में सुंदर सा भजन से हमसे यहाँ पर श्रवण किया है। हिंदू भाषा स्कूल फाहौन जो दिन हाखमा का इसरात नंबर 6 पे है, हिंदू भाषा स्कूल फाहौन फरीन अल खमेन हिंदू ओंदरवेस की तरफ से

आवो जी गजानंद आवो, जरूर से हम पुकार करेंगे तो गजानंद जरूर से अपना हाजिर देंगे, अपना हम अपना शक्ति अपना ज्ञान जो हमको जरूर से उसे उस गणेश जी हमको देगा। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है, जिससे भी आती है कोई मुसीबत, जिस पे भी आती हो कोई भी मुसीबत, उसे इन्हीं ने तो संभाला है। Den Haag, Den Haag, Leidschaveen voor Parkse, bouw- en onderhoudsbedrijf, Jo Sriman Haridat Rohit Demnarayan Inka Malik hai, Inki taraf se sundar Ganesh Bhajan yahan se hum sab milke aur shravan ki hai. Den Haag Leidschaveen voor Parkse, Sundag Groothandel in groente en fruit, Inka Malik jo hai, Sriman Parshuram Mohanlal, Inki taraf se hum shravan karenge.

सुंदर भजन पेश किया गया था। दिनांक लेस का फिल्म फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा क्रोधांधल बेफी की तरफ से। आपको लेकर चलते हैं रोटरडम। रोटरडम हॉगफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर 7 में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात। रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे।

दिल वाला होगा। पेश किया गया है रोटरडम होपफुली टेक्सास रख नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से और साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट से रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट ससफेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित

पेश किया गया है सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। फाउन रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सोनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते।

पर्सनल सभी फ्रीविलर्स की तरफ से हमारे सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते तोहफा के रूप में। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप जो हमारे साथ दी है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में, आपके साथ में भी यहाँ पर गोटा लगाए है। और ये हो एक अपगलाद बेन को लगता कि ओक सो अपगलाद बेन एंड दैट यू दान ओक अ मोये दाग तगमोत कोम। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

फिल्म सदक से यीशु नरसा गीत निकाल दिया गया है आपके लिए मेरे प्यार सुनने वालों। फिल्म का नाम है आपसे बता दे हम सदक। जी हाँ, फिल्म का नाम सदक। और शानुदा के आवाज में यहाँ से सुना दी है कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है और वो कौन। चले यहाँ से मिलकर एक बार फिर हम श्रवण करेंगे अनुराधा पाव धवल जी की आवाज में और कुमार शानू जी की आवाज में।

0: Vahom Hindustani Radio.
1: जिसने जैसे सोच लिया वैसे हैं हम, जिसने जैसे सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरे ईश्वर जानते हैं कि कैसे हैं हम। दुनिया का कोई कलाकार, दुनिया का कई कलाकार सिर्फ एक स्त्री की मूर्ति बना सकता है। आप सुनिए जा कि दुनिया का कोई या कई कलाकार सिर्फ एक स्त्री का, एक स्त्री यानी के अफ्रॉग, एक स्त्री की मूर्ति बना सकता है, बल्कि माँ की नहीं, एक माँ, माँ बहुत अनमोल हो। आप जरा उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है।

सरप्राइज सरप्राइज कि सब कुछ है उनकी महबूब में अदाई भी है मोहब्बत भी है और क्या क्या है ये आपने तो सुन ली है ये सुंदर सा गीत में जो आपको सुना दी है अनुराधा पौडवाल जी और शानुदा जी। फिल्म का नाम आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है, फिर भी मैं सोचती हूँ यहाँ से आपको भी बता दें। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

और सेवा का अर्थ क्या है, ध्यान और सेवा का अर्थ क्या है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। और ये भी एक समझदारी के बात है। कहते हैं कि समझ समझ के समझना एक बड़ा समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे वो भी एक समझ है। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है ना काम वाला बात। एक बार फिर हम ये दो लाइनें हैं जो हम जरूर से दोहरा दे, क्योंकि इसमें बहुत गहराई है कि कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। हमको आईना दिखा रहा है कि हम गलत हैं, तो हमको मौका मिलता है सुधर जाने के।

0: अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास जी की आवाज में इस बार हम यहाँ से श्रवण कर लिए। फिल्म का नाम सदक और गीत का बोल तो आपने खुद ही सुन ली है। जिंदगी जिंदगी उपहार है, जिंदगी उपहार है, यानी कि अखरोट का दो, हतलीफ इस अखरोट का दो। जिंदगी उपहार है, खोल कर जी पाए तो हर दिन नई बहार है। जिंदगी उपहार है, खोल कर जी पाए तो हर दिन नई बहार है। मुस्कान से सजाए इसे, तभी खुशी संसार है। जी हाँ, तभी तो खुशी संसार है अगर हम मुस्कान से सजा लें अपने नई बहार को, अपनी जिंदगी को।
1: न्यू प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोंग हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

वेरी वेरी रोमांटिक सॉन्ग, कितनी कल्पना है इस गीत में गाए है और क्यों गाए है आवाज से तो आपने पहचान ली है। फिर भी सोचती हूँ या बता देती हूँ कि उदित नारायण जी के आवाज में फिल्म का नाम पप्पा कहते हैं। जी हाँ, पप्पा कहते हैं फिल्म का नाम है मेरे प्यारे सुनने वालों। पैसा के बारे में दो लाइन यहाँ जरूर सुनाना चाहती हूँ। ये पैसा भी अजीब चीज है, ये पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। सब नहीं बल्कि कोई कोई ऐसा ही है। पैसा तो सिर्फ एक कागज का नोट है, उसमें मुंह नहीं है पर क्या क्या दिखा देता।

सुंदर गीत आपको सुना दे शानू कुमार शानू जी और अलका याग्निक, वेरी रोमांटिक सॉन्ग। मूवी का नाम पापा कहते हैं। Als iemand je verkeerd begrijpt, verspil je tijd niet om je te rechtvaardigen. Want degenen die jou goed kennen, zullen je nooit verkeerd begrijpen. So is dat. Galti usi se hoti hai, mere pyare. Galti usi se hoti hai, jo mehnat se kaam karta hai. कम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है।

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: सुनने वालों, प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। कभी खुश यानी कभी खुशी कभी गम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बोले चूड़ियां बोले कंगना।

आप सुन रहे थे बोले चूड़िया बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हम से हमने पेश किए है जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए जरूर खास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो from the movie कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं यहाँ पर सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

कसम खा के कहो, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद न कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ? नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन चुके होंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार तेरे आने से आए, तेरे जाने से जाए। आपका यज्ञिक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी रन से आप सुनेंगे।

से आए तेरे जाने से जाए, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

0: सुन रहे थे बर्दाश्त नहीं कर सकता। के और सुनिधि चौहान आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमराज से हमने पेश किए हैं दर्शन द वंडर कार। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ लाला रे।
1: हे यू गाइस लिसन टू मी बेबी से ओ ला ला ला

From the movie Darshan, The Wonder Car, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं ऊ लाला रे, ऊ लाला रे। के साथ में अलका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे। दिल कह रहा है, फ्रॉम द मूवी दिल कह रहा है से हम पेश करते हैं, और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे दिल कह रहा है। ओ जाना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से हम पेश करते हैं।

उदित नारायण अलका यज्ञिक के और कमल खान आपको सुनाने वाले थे। चलिए हम पेश करते हैं।

Hartelijk, hartelijk, hartelijk welkom. Yes, yes, yes, yes, yes, my dear listeners. Ik heet u van harte, harte, harte welkom. Op dit gelegenheid, op dit moment. आज से बेहतर कुछ भी नहीं. हाँ मेरे दोस्त, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज जाता नहीं. यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरी, प्यार प्यार प्यार भरी, ढेर सारे प्यार आपके लिए लाई हूँ. हाँ तो स्वीकार कीजिए प्यार भरी. नमस्कार. स्पेशल स्पेशल गीत आपके लिए सेलेक्ट करके और लाई हूँ. यहाँ से हम मिलजुल कर उसे हम श्रवण करेंगे और मनोरंजन उठाएंगे. अभी मेरे से पहले आपने सुने कोलिखा विजय

आप जो चुन हैं आपको भी दिल से धन्यवाद किया जाता है। जिता एनख एख्त फाहन हिंदुस्तानी रेडियो।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मौसम है, दस्तूर है, तो यहाँ से आपके लिए स्पेशल स्पेशल गीत भी है।

यस यस यस, इस टाइम टू डिस्को कल हो ना हो से निकाल दिया गया है आपके लिए। और कहती हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, कोई सवाल ऐसा आए कि पानी हम क्यों पीते हैं, पानी हम क्यों पीते हैं, तो जवाब उसका सिंपल सा है, क्योंकि पानी हम खा नहीं सकते, इसलिए हम पानी पीते हैं। और कहते हैं कि ना, जो जीवन साथी सही वाला मिल जाए ना, तो जीवन में रोशनी ही रोशनी है। हाँ, लाइफ पार्टनर जो सही मिल जाए तो जीवन भर रोशन ही रोशन है। अगर एक गलत मिल गया तो जीवन भर ही झटका देगा।

0: हाँ, सलमान खान बजरंगी भाईजान से सुने हैं आप और मैं ये भड़कता हुआ गीत।
1: चुपके से आए, नजरें मिलाए,
0: बॉलीवुड रैगी।

इंडिया बॉलीवुड रेगी म्यूजिक 2026 के हैं। कहते हैं कि जिधर भी जाओ मेरे दोस्त, जिधर भी जाओ किससे बस लाइफ पार्टनर के होते हैं। हाँ, बीवी और हस्बैंड के बस लाइफ पार्टनर के लिए किससे होते हैं। कोई लाने के लिए सोचता है, कोई लाकर रोता है।

हाँ फिर से मेरे दोस्तों, फिर से अंशफर राइट से क्लेम अंडर फियाडुक। हम ना समझिए सब चलावे हो तो वह तक आए ना ख्याल करेगा, फियाडुक कौन पे तो लिखा ले ना। Een chauffeur heeft een bakwagen dinsdag klem gereden onder een tramviaduct in de binnenstad van Den Haag. Hemoremalik. Het voertuig is zwaar beschadigd. De achterkant van de bakwagen ligt grotendeels in puin, natuurlijk. फोर ट्वेल्व हो चला है, टाइमिंग है, ट्वेल्व फोर ट्वेल्व हो चला है। आप भी कोई वैंस कर सकते हो इस समय पे ट्वेल्व फोर ट्वेल्व। और आज अभी 12 बजे ब्रेक के बाद यहाँ पे आपके लिए उपस्थित हो जाएगा श्रीमान श्याम पूरन।

अभी एक गीत के बाद मेरे दोस्तों यहाँ से मैं रुखसत होंगी, क्योंकि मुझे जगह बनाना है हमारा कॉलेज के लिए। एक गीत के बाद ब्रेक लगाऊंगी, न्यूज़ लगाऊंगी, उसके बाद श्याम पूरन जी यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा तब। और यहाँ से कहती हूँ देने सुनने के लिए आपको दिल दिल दिल से धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए यहाँ से मेरी प्यार भरी नमस्कार।

0: दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। नंबर 3, जो खुद गलत होते हुए भी मुझे ज्ञान देते हैं, जबकि जरूरत है कि पहले अपने गिरेबान में झांके।
1: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की माँ को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
2: U luistert naar Hindustani Radio,
3: Radio Fahun. Digitaal radio, internet, fahunfm.nl.

0: कर्म कहो किस्मत कहो, कर्म कहो किस्मत कहो, चाहे कहो तकदीर, पहले बना प्रभाव पीछे बना शरीर। कर्म के गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा ही भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यही मरम। प्राणी रे हाथ में ही प्राण, तेरा अपना ही कर्म। सुनने वाले की सेवा में साथ इसी नमस्कार, मेरी यादावश और आज गुफा हूँ कि आज प्रोग्राम जो है दोपहर के कार्यक्रम 25 तारीख फेफेंट में देखें और कार्यक्रम जो है, और यहाँ से मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपकी सेवा करने जा रहा हूँ। अभी प्रोग्राम सुन रहे थे कुलेखा जो है, जाकर शांता जी के जरिए से यही मैं सोच रहा हूँ, जिन विचार से अपने जिन अंदाज में ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किया, आपको पसंद आया हुआ होगा। तो साथियों, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपके लिए प्रोग्राम प्रस्तुत करने की। प्रथम में जो बीमार लाके आ रहे उनकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और परपिता परमेश्वर से माते में सहन शक्ति के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, और जाकर आपको सहन शक्ति प्रदान करें। दुख तो हर को आ जाता है ना, और इसी तरह से जिंदगी यही आना जाना है, इसी तरह से लगा रहेगा हमेशा हमारे साथियों। कोई के जन्मदिन है और ये खुशी का दिन है, जन्मदिन है, तो बधाइयाँ शुभकामनाएँ हम दे रहे हैं उन लोगों को, और यही परमपिता परमेश्वर भगवान से प्रार्थना करें, लंबी आयु के लंग ले खुद खुशांत है, तो यही हम और इसी के लिए प्रार्थना करें हम आपके लिए हमारे साथियों। यात्रा पे एक शुभ यात्रा हो, और इस देश में आए हुए सज्जनगण को घर पे आए अतिथि, अतिथि आए हो ना, उसे दिल खोल के और उसे हम सेवा सत्कार करेंगे अवश्य। जैसे आपको मालूम है मानिक सनातन धर्म, ये हमारे धर्म जो है जाकर यही बात सिखाता है कि कैसे हम लोग को और जीना ही चाहिए आपस में मिलके, और इसी तरह से हमारे साथियों।
1: अधिकस्य अधिकम फलम कहते हैं, गीतकार हसरत जयपुरी साहब के दो सुपुत्र यहाँ आए हुए हैं, आसिफ और अख्तर, तालियों की एक।
0: और हमारे दोस्तों प्रोग्राम फाहुन के और दोपहर के प्रोग्राम तो आलिफ मिनट आलिफ चला है, और आज के कार्यक्रम में और मैं क्या क्या होगा, अभी कुछ पल मैं आपके साथ रहूँगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इस वक्त इस पल अपनी ज़िंदगी के बिता रहा हूँ। दोस्तों सनातन धर्म के पालन करते हैं आप, तो कुछ पल और मिल कर ये करिए जो हम लोग के साथ ले जाना है, जो हम लोग के साथ ले जाना है। जैसे आपको मालूम है हमारी प्रिय मित्रों दोस्तों, और जो जाकर यही सुकार्य करते चलो, समाज सेवा करते चलो, जहाँ तक हो सके आपको हर पल जो बीता वो नहीं आएगा जिंदगी में ना, जिंदगी एक ही है, इतना मिनट, इतना घंटा, इतना दिन, इतना महीना, इतना साल, फिर ख़त्म ना जो ही। और हम जो जीते हैं खुशी हंसी खुशी से आपस में मिलके प्यार बांटते चलो, सर्व भवन्तु सुखिनः आप जानते हो, और वासुदेव कुटुंबकम ये हुआ आप जानते हो, और ये जो है दुनिया संसार में जो लोग खुशी से रहते खुश सुकून मिलता है, कोई दुख में रहता तो क्या होता है आप जानते हो, आपके साथ बीता हुआ होगा ज़रूर। कोई ये आप देखें और कोई आ रही देंगे ऐसा यातायात में फिरकेर में कोई जो है हादसा हुआ और आप देखे कोई दुख में है तो दिल दुखी हो जाता है ना। और इसी तरह से हमारी साथियों हमारे मित्रों, और ये मैं आपसे बतलाता चलो, जिंदगी जीते चलो, धर्म करते चलो, और जाकर जो है किसी के काम आते चलो साथियों। यही तो हम और हमारी मिशन जो है, इंसान के नाते हम आए हैं इंसान के नाते ज़रूर, और ये ज़रूर निभाना चाहिए। जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो, बेस सकते सात रख, और लाइफ आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आज दो और तीन के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन रहेगा, आकर जो है सुनाम के समाचार आपसे बतलाएंगे, और इसी दरमियान में आपसे कह जाऊं भारत से और हो सकता है प्रखंड विद्वान जो है श्री पूज्य पंडित नरेश से आप सुनेंगे एक प्रवचन। तो पल जो मैं आपके साथ बिता रहा हूँ, गुजार रहा हूँ, बेहद सुकून खुशी हृदय में। और कुछ पल के लिए मेरे साथ जो है, अगर आप चाहे दोस्तों तो यूं ही साथ दे सकते हो, अगर देंगे और शांति आनंद जो हम लोग के मिलेगा, आनंद मिलेगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे साथियों मित्रों। और ये कार्यक्रम जो है यहाँ कुछ पल के लिए।

जाकर हनुमान स्वामी बाबा जो जाकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे हमारी साथियों, और सही राह पे आप चलते रहो, अवश्य आपकी जो मनोकामना भगवान जो जाकर पूर्ण करेगा। Zes voor half één. Zaterdag vandaag, beste mensen, 25 juli 2026. आप साथ मिलके गए हनुमान चालीसा, आपके काम आएगा साथियों। कल जो है रविवार का दिन एकादशी है, इसी खुशी अवसर पर जो है एकादशी महीना में कई बार रहता है, जैसे आपको मालूम है बरस में कई बार रहता है, फिर भी कल जो है एकादशी इसी खुशी अवसर पर रथ यात्रा इन दिनों है और चल रहा है, यहाँ भी चलेगा जैसे आपको मालूम सुना में, जहाँ जहाँ जिसके जैसा अवसर मिलता है तो वही पल वही घड़ी लोग ढूंढ कर प्रतीक्षा करते हैं वही पल के लिए, यहाँ पे मनाते हैं ना हम साथ मिलकर। और जाकर भगवान आपकी मनोकामना जो पूर्ण करे। श्री प्रभु शिव चेतन जी उनके तरफ से, इनकी समस्त परिवार के तरफ से, धर्म पत्नी बाल बच्चों के तरफ से, संस्था जो है इस्कॉन इसकी तरफ से आपको एक शुभ दिन सुप्रभात हमारी प्रिय दोस्तों।

पवित्र पर्व जो है रथ यात्रा तो चल रहा है, लेकिन एकादशी के अवसर पर आप कहीं के नाम आपकी मनोकामना पूर्ण हो।

तो जैसे मैंने आपसे बतलाए, हमारे साथियों प्रभु शिव कीर्तन के परिवार जो है और इस्कॉन जो मंदिर बन रहा है, जैसे आपको मालूम है ऐसे फन रात पे वहीं से खास करके जो है इन लोगों की तरफ से आज के कार्यक्रम में ये जो है एकादशी के अवसर पर और आप ही के नाम, आप ही के कल्याण और हम सब सृष्टि के कल्याण के लिए जो है ये संस्था इस्कॉन है और एकादशी कल है, बहुत ही समारोह के साथ मनाया।

राधे, हर एक को कल्याण करे, भगवान के नाम लेते चलो, सुकार्य करते चलो, वाहन पे चुनना मत भूलना, लाइफ ऑफ सेंट और राजगुरु फाहुन हमारे साथियों।

निकल आता है आंसू जब मुलाकात नहीं होती, टूट जाता है दिल जब बात नहीं होती। तेरी जान की कसम मेरी जान, हाँ तेरी जान की कसम मेरी जान, तेरी याद ना आए ऐसी कोई रात जो जाकर नहीं होती ना।

महान कलाकार आशा भोसले जी, उन्हीं की कमाल। क्लासिक हिंदी सॉन्ग है हमारे साथियों, फिल्म का नाम तीसरी मंजिल। स्टार कास्ट इस फिल्म के शमी कपूर और आशा परेख,

और बता दूं जरा से कि जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है। मेरी जिंदगी तो एक अधूरी कहानी है, चाहते तो मिटा देते हर दर्द को, हाँ चाहते तो मिटा देते हर दर्द को, मगर ये दर्द ही तो उसकी, हाँ उसकी आखिरी निशानी है।

अब इसीलिए एक वादा किया था, एक वादा निभाने के लिए, हाँ एक वादा किया था, एक वादा निभाने के लिए, एक दिल दिया था, एक दिल पाने के लिए, लेकिन उसने मोहब्बत सिखा दी और कहा मैंने तो प्यार किया था, मैंने प्यार किया था तुम्हें आज माने के लिए हमारी साथियों, और ऐसा गलती कभी नहीं करना।

ये इश्क वाले ये इश्क वाले वफा की कीमत क्या जाने, बेवफा है ये गम की मोहब्बत हाँ क्या जाने। मिलता हो जिन्हें हर मोड़ पे नया हम सफर वो सच्चे प्यार की कीमत क्या जाने।

पद्मश्री कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल, इन दोनों ये आवाजों में कि मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं, दिल जिसे भी चाहा वो मिला नहीं। बदनसीब कहूँ या वक्त की बेवफाई, फूल जो लगाया वो कभी भी, हाँ कभी भी खिला ही नहीं।

आशा भोसले, उन दिनों की बात है ना, एक कलाकार की कहानी यही है, वो हमेशा साथ है, मरहूम कभी नहीं होते।

साथियों, बड़ी बड़ी बातें करते हो वैसा साथ निभाओगे क्या? बुलाने पर तो सब आते हैं, तुम याद करने पे आओगे क्या? गलती कर दो, गलती कर दूं नादानी में तो तुम समझाओगे क्या? लाख कमियां निकालिए, हाँ लाख कमियां निकाले ये जमाना, तुम फिर भी अपना बनाओगे क्या? बताओ और चल के

चुप है लेकिन चांद खामोश नहीं। कैसे कहूँ कि आज फिर मुझे होश नहीं, इस तरह डूबा हूँ तेरे मोहब्बत की गहराई में कि हाथ में जाम है, हाँ हाथ में जाम है, लेकिन पीने का हमें जो होश ही नहीं।

वीर ने जैसा चाहा वैसा ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम, किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है बहुत बदल गए हैं हम।

वाह आपकी याद आती है तो कभी आंखें भीग जाती है आपकी याद आती है तो कभी आंखें भीग जाती है तो कभी यादों में रातें बीत जाती है। कोशिश तो बहुत की पर मगर यही तो है, यादें तो यादें हैं ना, कभी हम हार जाते हैं और कभी ये यादें जो है जाकर हार जीत का खेल में जीत ही जाते हैं।

होश बातों का अक्षर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था, तूने लिख दी ये तकदीर वरना इश्क वफा मुकद्दर नहीं था। तेरी नजरों के कारण छूटे है दीन और धर्म, किया ये तुक्के या अभी कुछ और सितम। नहीं संभाला दिल मेरे संभाले इसे कर दाता, हाँ इसे कर दाता तेरे हवाले। तू मिटा दे या चाहे बचा ले, या इश्क पे मेरे चला दे अपनी मर्जियाँ। तेरा तेरा तेरा हाँ तेरा हुआ हाँ, इश्क तेरा तेरा तेरा हुआ हाँ, यही मेरा कहना है। और यूं ही हमारे साथ क्यों आप क्यों आप कहीं किस सेक्शन जनता के आवाज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 घंटे लगातार इस सारी जहान में इसे आप सुन सकते हो, सारी दुनिया में या सारी सृष्टि में संसार में इंटरनेट के जरिए www.fahunfm.nl। तो दोस्तों और ये शाम के प्रोग्राम धीरे धीरे, और शाम नहीं है फिर भी दोपहर के प्रोग्राम आप श्रवण कर रहे हो। दोपहर के कार्यक्रम में कुछ संगीत जो पेश कर रहा हूँ तो हो चला है, अभी आप सुनेंगे श्रीमान रौली मोहन सुनाम से, और जाकर आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत करेगा, खबरें बताएंगे, सुनाम के हालात जो है बहुत ही नाजुक है दोस्तों, और धीरे धीरे दिन पर दिन और दूर चला जा रहा, कहाँ कितना दूर नीचे चला जा रहा है, कौन क्या करता है वही इंतजार में, कभी कब पैसा तेल मिलेगा तब कब देश के और चाहेंगे, फिर भी वहाँ से और कर्जा लेते चले जा रहे हैं लोग, क्या उन जो है आज की राजनीति के क्षेत्र पर वो जब भाग लेते हैं, और पॉलिटिक्स तो हर एक देश में अपना कार्य करता है, दुनिया में हर एक मुल्क में ये होता है ना, और पॉलिटिक्स के कारण यानी वस्तु कैसे घर चलता है उसी तरह से देश भी चलाया जाता है, जहाँ जैसे जिसको मिलता है वहाँ जाकर जैसा तकदीर वही मिल जाता है।

Je weekend heb program he. Wat vindt u ervan? Mensen die gebeld hebben, moet ik zeggen. Dank u wel voor uw attentie. ये कार्यक्रम मैं आपके लिए लाइव प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ दोस्तों, हमारे मित्रों। और जबकि ये सविता सिंह आने वाले दिनों में आप उन्हें जरूर देखेंगे, और जो है सौदर पार्क मिलन में

0: दविंदर सिंह शिवनाथ, सविता सिंह,
1: झरनों की सदाओं में सांवली,
0: हमारे ही कलाकार एक सुनाम एक त्रिदत्त और तेबेगो की आज शनिवार के दोपहर के प्रोग्राम 25 minuten over 3 आप ही कृपा हूं हिंदुस्तानी रेडियो

प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसे रोल से सुन रहे हो। यह कार्यक्रम जो है आप ही के नाम से चला रहा हूँ और आप ही की गुजारिश पर यह नंबर जो है चला रहा हूँ मैं और हमारी बेस्ट मैन से मुकेश जी की आवाज है, द हार्ट और लॉप ऑफ मिलियंस, दिल चुराने वाली, हजारों लाखों करोड़ों के दिल चुराने वाली की आवाज है।

तो यही तो मैं कहता हूँ दोस्तों, सर्व भवंतु सुखिनः। आप खुश तो हम खुश, और भैया रजेश बदलू जो प्रोग्राम में हमारे साथ दे रहे हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमें हमें हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना भैया रजेश, हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं, और क्या करें। आप ही बतलाइए, ये कार्यक्रम जो है इस बार नंबर जो मैं आप ही के लिए चुन रखा हूँ,

भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूटे, हाँ एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर अगर ये जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। दोस्तों आप जानते हो यही जिंदगी है, यही जिंदगी के घड़ियां है, पल है जो जिंदगी में बीता है, बीते हैं तो उसे हम नहीं और भुला पाते हैं, जिंदगी जीते रहते हैं। जो जिसके तकदीर किस्मत और नसीब में लिखा हुआ होता है वही मिलता है ना।

आवाज में शब्दों में क्या एहसास आपको होता है? दर्द ही दर्द, किसी को जानबूझकर नहीं देना, नहीं देना और दुख दर्द ये जो है प्यार में मिलता है। लोग जिंदगी जीते रहते हैं ना, जो देते हैं जानबूझकर, क्या उसे सुकून मिलता होगा? यही मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं।

और यही तो जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं। इसी जिंदगी में ऐसा ऐसा हादसा, मैं कहूँ या क्या कहूँ, शब्दों जो मेरे जुमा से निकलने वाला है, जो मेरे जहन में है, वो कहना चाहता हूँ कि यही है कि दुआ मांगते रहो अजनबी जी, दुआ मांगते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है, रब के लिए तो कुछ भी ना मुमकिन नहीं। और हमारी यानी जी भी प्रोग्राम सुन रहे आपके पति देव के, और जो है ये मांग था, तो यानी ये आपके पति देव के नाम से ये प्रस्तुत किया गया, खास करके ये नंबर जो है आप सुने। और आगे में चलकर इस बार नंबर जो मैंने आपके लिए चलाने वाला हूँ, हर एक को एक शुभ दिन कहते हुए बदनाम करते हैं लोग मुझे, जिसके नाम से बदनाम करते हैं लोग मुझे, जिसके नाम से कसम खुदा की कसम खुदा की, मन भर के कभी उसके देखा भी नहीं, यकीन करो और ये सुन लो जरा से।

हाँ तो दोस्तों आपको प्रसन्नता है, बतलाइए, चाहते हो यूं ही जरूर आप बतला सकते हो। हमारी प्रोग्राम कैसा है मैं जानना भी चाहता हूँ, आप बतलाते हो तो यूसी के इंतजार में।

0: लिखा है वही तो मिलेगा। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हो और मैं नहीं कहूंगा कि दर्द भरा नगमा है, शब्द जो है लिखने वाले जो लिखा है उन्हीं शब्दों में, तो मैं वो एहसास होता है आपको गाया गया है कलाकार में और आपको एहसास की वो दर्द है ना जहाँ पे, और दर्द तो कोई ये प्यार में नहीं देना चाहता है कभी नहीं। फिर भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ ये रीत है, लेकिन ये होता ही रहता है जब से सृष्टि बना है ये सब कुछ है। तो यहाँ उपस्थित है मेरे भैया राजेश जी और यश बदलू जी, मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ इस गीत के बारे में और वो भी कुछ कहना चाहते हैं उनके आवाज जरा से, और मैं सुनना चाहता हूँ आपको सुनाना चाहता हूँ क्या है उनके दिल में वो दर्द, वो एहसास आपको अवश्य होगा। राजेश जी कह दो।
1: बर्बाद तो मुझे होना ही था मोहब्बत जो गलत इंसान से की थी मैंने।
0: कैसे भैया राजेश आपको हृदय से धन्यवाद, फिर भी यही मैं और ये बात कहावते होता है ना, तो यूं ही मैं आपसे कह देता हूँ कि शुरुआत में कैसे आप जान सकेंगे जो आपके प्यार हुआ किसी से प्यार हो चला तो कैसे आप जान सकते हो कि भविष्य में तुकों में क्या होने वाला है। निमंत वे हर एक कोई चाहता है जो उनकी प्यार होता है उस वक्त की जिंदगी भर तक हमेशा तक वो कायम रहे, लेकिन क्या से क्या होने जाता है वही भैया राजेश और कहा कि गलत इंसान कब आप

0: ये तो नगमा है शब्दों में आप सुने, जिंदगी की बस इतनी सी हकीकत है। इंसान पल भर में ज्ञात बन जाता है। आप को इसके बारे में क्या बात है, क्या कहना है? बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। हमारी और बेस्ट मैन से पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम आप सुन रहे हो, मैं आपका सेवक, साथ में हमारी भैया रजेश बद्दू, हम दोनों मिलके आपके साथ दे रहा हूँ
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio,
0: Radio Pahon. Digitale radio, Pahon.fm.nl.
3: Dit is het Pahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Pahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Pahon Hindustani Radio.
6: याद रहे, आपका तमाशा वही बनाते हैं जिन्हें आप अपना दर्द बड़े भरोसे से सुनाते हैं।
7: एक बात बोलूं, जो लोग पैसों का घमंड करते हैं ना और दूसरे लोगों को अपने आप से नीचा समझते हैं और कहते हैं ना कि तू क्या है मेरे सामने, तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूं कि समय बड़ा बलवान होता है, छाया भी दिन में 3 बार चेंज होती है, तो इस समय है कब पलट जाए पता नहीं चलता है, इसलिए इसका घमंड मत करो और सब भाईचारे से रहो।
8: इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता।
0: हमारे तार को नंबर 07 362 20 77 07 362 20

हाँ दोस्तों, जय चटनी क्वीन। चटनी क्वीन कहते हैं इसे। आशिनी माता दिन की कमाल। अब आज के प्रोग्राम में इनकी संदेश जो है यूं ही आपसे बतला रहे हैं। ये देवी जी, ये जो है खास हमारी जो है और माता दिन, आशिनी माता दिन, और संगीत में और कलाकार है ना, कलाकार है। और ये कहती है आपसे, आज का दिन ये मत भूलना दोस्तों इस पल के लिए, कि माँ एक माँ होते हैं, ये पवित्र नाम जो है माँ सबकी जगह ले सकती है। माँ ना, माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये आशिनी कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। ऐसा है तो आप ही बतलाइए, ऐसा अगर ऐसा है तो ज़रूर आप बतला सकते हो।

16 संस्कार में से एक संस्कार यही तो होता है ना, मुंडन संस्कार। आशिनी

किसका और कितना अपना है। हाँ, कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है और आशनी जो साथ दे रही है ना।

बताता यही चलूं कि खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। ये कहती है, बतलाती है उनसे, इन अख्त इरन राम खिलावन जी।

अभी से कार्यक्रम में आप जो सुन रहे हो, हमारा ही कलाकार जो है, कौन है हमारे कलाकार, आशिनी जी। और आशिनी माता दिन क्या क्या अपनी क्रिया है, खास करके कलाकार है और अपनी जुबान से अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: मधुर संगीत कहते हैं ना यूं ही। और आज जो है
1: पुस्तक है तो उनका, पुस्तक हो तो उनका हाल भी पूछ लिया करो, पुस्तक हो तो उनका हाल भी पूछ लिया करो, जिनके सीने में दिल की जगह तुम धड़क।

0: सुंदर पोपो सुंदर पोपो
1: जियारा लहर लोट हो जाए गुरिया
0: जादू भरी आवाज कलाकार अपने अपने जगह
1: गुरिया मारो ना।

ये कलाकार फ्रॉम त्रिनिदाद एंड टोबैगो दोस्तों, वहीं के निवासी और अपने आवाज में सात संगीत जो है हमारी, यही हम लेकर आए हैं अपनी भारत भूमि से।

द ग्रेट, खास करके ये आवाज जो है आप सुने मोती माला और भोला सिंह के कमाल।

समस्त फलक मेलोदीय न कभी ये पुराण नहीं होते हैं। कैसा आपको लग रहा है, मैं उन दिनों में बचपन में सुना और आज सुना तो उसी तरह से और आज के संगीत में ये जाकर मिलती है जुलते हैं ना, क्या बात है। आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप अवश्य ज़रूर कह सकते हो अगर कुछ आप चाहो जो कहने के लिए। मुमकिन मौका है।

हाँ हमारे दोस्तों, पता नहीं लोग मुझसे नाराज क्यों होते हैं, जबकि उन्हें पता है कि मुझे मनाना नहीं आता है। हमारी साथियों, एक वक्त था कि सारा दिन बात करते थे, और एक वक्त है बात करने की तरसते हैं। तो किसे मैं गुजारिश करूं ये बात, आप ही बताओ। प्यार मोहब्बत जो होता है फिर कभी नहीं हो सकती। मोहब्बत मुझे, हाँ फिर कभी नहीं हो सकती मोहब्बत मुझे। वो शख्स भी एक ही था, ये दिल भी एक ही है, तो कैसे होगा, बतलाइए, ये हो ही नहीं सकता ना।

खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ते इसे लिख नहीं सकते, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता, और रब जो है भगवान खुदा और रब के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। हमारी साथियों,

को बतलाना ही पड़ेगा ये बात जो है। मत रख के इतनी नफरतें अपने दिल में आए इंसान, हाँ मत रख इतनी नफरतें अपने दिल में आए इंसान। जिस दिल में नफरत होती है ना, उस दिल में रब नहीं और रहते। क्या बात है, क्या कहना है आपको, यूं ही कह सकते हो, कह डालो।

Daar we waren, Kalakaro. Sangeet. यकीन मानो हमारी जो है यकीन आप चाहे तो करो ना, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले भगवान जो है, जैसे भी आप चाहो कह दो, जो नाम से आप पुकारना चाहो पुकारो, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। इसके बारे में आपको क्या कहना है, यूं ही हमेशा और अपने विचार रख सकते हो, क्योंकि तार को नंबर नौ सौ फतेह सौ फतेह जो है हमारी साथियों।

कलाकार है अपनी अपनी जगह हर एक कोई जो है। कहता हूँ और माँ के जो याद करता हूँ, कितना भी लिखूँ उसके लिए कम है। एक माँ पवित्र शब्द अपने जुबान पे जो मैं लेता हूँ, तो माँ जो है कितना भी लिखूँ उसके लिए कम है। सच ये है कि माँ ये शब्द हमारी साथियों तो है, तो हम है कहना

आज जब मैं माँ के बात कर रहा हूँ ये शब्द, तो हमारे साथियों माँ की कमी जो है, माँ ये नाम फिर से एक बार, ये पवित्र नाम जो है पाक है ना, कहते हैं लोग, कहते हैं कि किसी एक की चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से, लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरा नहीं और जाकर हो सकती है हमारी साथियों।

अभी वही माँ के आसपास हम घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं दोस्तों, उसी के भी पास है ना, क्योंकि माँ के सबक जो है उसे सीखा हूँ, जाना हूँ और यही आपको भी बतलाता हूँ कि माँ जो है ये पवित्र शब्द मुझे दिल तोड़ना नहीं आता, क्योंकि मैंने प्यार करना अपनी माँ से सीखा हूँ। हमारी साथियों

परिवार के रिश्ता में जो होता है मां से बड़ा कोई हमदर्द नहीं और बाप से बड़ा कोई हमसफर नहीं।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: समझदार लोग हमेशा कहते हैं कि जिंदगी हमेशा एक भेड़िए की तरह जियो। पता है क्यों? क्योंकि भेड़िया कभी गिरी हुई चीज नहीं खाता, वह कभी सर्कस में तमाशा नहीं बनता और न ही किसी के इशारों पर चलता है। वह अपनी शर्तों पर जीता है। भेड़िए रिश्तों की कदर करना जानते हैं। वह अपनी माँ और बहनों के साथ संबंध नहीं बनाते और जब एक बार साथी चुन लेते हैं तो जिंदगी भर उसी के साथ रहते हैं। अगर उनका साथी मर जाता है तो वो कम से कम 3 महीने तक शोक मनाते हैं और कभी कभी ये शोक 1 साल तक चलता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि भेड़िए अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और शिकार करने लायक नहीं रहते तो बाकी युवा भेड़िए उनके लिए खाना लेकर आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। सोचो, एक जानवर जिसे जंगली कहा जाता है, वह रिश्तों की इतनी इज्जत करता है, अपने आत्मसम्मान के साथ जीता है, अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है। और हम इंसान शायद हमें भेड़ियों से बहुत कुछ सीखना होगा।
2: हमेशा याद रखें, दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी रुकती है, समय नहीं, और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं।
3: घमंड किस बात का है मेरे दोस्त? दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए इन 3 चीजों पर कभी भी घमंड मत करना।
1: अगर ये 4 गुण किसी के अंदर है तो समझ जाना कि वो एक मतलबी इंसान है। नंबर 1, मतलबी लोग दूसरों का पैसा खर्च कराते हैं और खुद का पैसा खर्च करने में कंजूसी करते हैं। नंबर 2, मतलबी लोग खुद का काम निकल जाने के बाद आपका हाल तक नहीं पूछते हैं। नंबर 3, मतलबी लोग खुद का काम पढ़ने पर ही आपको याद करते हैं। नंबर 4, मतलबी लोग हर बात पर फायदा और नुकसान देखते हैं। नंबर 5, मतलबी लोग अगर आपकी जिंदगी में परेशानी चल रही हो तो वो आपका साथ कभी नहीं देते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है? यदि है तो आप जितना हो सके उनसे दूर ही रहे।
4: तो इसीलिए मैं आपसे कहता चलूं, ये बात जो है ना, क्या बात है हमारे साथियों, मिलने बिछड़ने का गम नहीं होना चाहिए। जिंदगी यही आना जाना लगा रहता है और जो है क्या कहूँ मैं, तो यही सुनाना है आपको ना। और हमारी यानी जी डंकुअल, हमारी इरन जी भैया, खास करके आप लोग के समस्त परिवार को यही कहना है।

waar wa. Ja, goed, hè. Wat hebt u zelf van gevonden? U mag dat aangeven, telefoonnummer 073-6220-77. Cello, tum saat mat dena. Mujhe beshak bhula dena. नए सपने सजा लेना, नए रिश्ते बना लेना, भुला देना सभी वादे, सभी कसमें, सभी नाते, तुम्हें जाना इजाजत है, जा सकते हो, जो दिल चाहे वो सब करना, मगर मगर मगर अब किसी से भी अधूरा प्यार, हाँ अधूरा प्यार न करना, यही जो है यूं ही और

0: और ये प्रोग्राम है हमारी साथियों, उदास मत हुआ करो बेवजह लोगों के कदर ना करने पर, बस सब्र रखो वक्त उसे आपकी कदर एक ना एक दिन सिखा देगा। हमारी प्रिय सज्जनों, फाहुन की सुनने वालों, साथियों,
1: दिल ने ये मान लिया है तुम ही हो मेरी मर्जी, न चाहते हुए भी तुमसे उम्मीदें रखता है।

प्यार जो हम आपस में करते हैं ना दोस्तों, इसमें से जो है दिल जान से यही सोचते हुए कि एक दूसरे की एहसास हो जाएगा, समझ जाएगा, हो जाता है, समझ में आ जाता है, फिर भी चलते चलते क्यों ये मतभेद कभी कभी हो जाते हैं ना। ये जिंदगी है, गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यारो हमारे साथियों। यहां तारीफ भी होगी और जलील भी किया जाएगा, ये जानते रहना। एनवीज फोर ब्राइट है

ये सब कुछ शब्दों से नहीं, यूं ही एहसास भी दिलाना पड़ता है। हमारे साथियों, और एक बात अगर आपसे बोल सकता हूँ, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला बैठा बुरा नहीं लगता और आंखों से आंसू भी नहीं गिरते है। ऐसा वक्त जिंदगी में आ जाता है कभी कभी ना, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं, कोई बात करे तो ठीक अच्छा, और कोई बात ना करे तो भी ठीक वो भी अच्छा, और हमारी बेस्ट में से हमारी प्रिय और सज्जनों,

फिल्म की जो थे जितेंद्र और नंदा, साथ में संजीव कुमार, धरती कहे पुकार की फिल्म नई खेती नई खन सस्तक यारताल

से निकाला हुआ गीत है, एक्ट किए हैं मीना कुमार जी, पक्की साथ नई कंटीन तुम्हें से ही तक बातचीत हो रहा है।

हाँ यही बात है, अपने बारे में जरा से कुछ कह दूं। हाँ, बिना सफर बिना मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूँ राही जी। हाँ सुदैव ने, बिना सफर बिना मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूँ, कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ, एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्ते और रिवाजों का, दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ मैं आज, मैं होना चाहता हूँ साथियों, मैं आज मैं होना चाहता हूँ। बताइए क्या बात है भैया। चांद रघुनाथ जी धर्मपत्नी शीश प्रोग्राम सुनते हो।

आप ही की स्टेशन जनता के पास वाहन हिंदुस्तानी रेडियो है 24 घंटे लगातार इसे आप सुन सकते हो। कोई भी काम काज के लिए तो यहीं पर आप दरियाफ कर सकते हो। मरीदार को नुमन सुई फिर तक अभी तक मैं आपका सेवक शाम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ।

अच्छा भोसले और साथ में बादशाहों के बादशाह सातों सुरों के बादशाह पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहेब

मेरे साथियों, आप कार्यक्रम सुन रहे हो कैसा है यूं ही जानना भी चाहता हूं कभी कभी ना। वैसे तो ऐसा बात तो नहीं कि अकेले बैठ के मैं खुद अपना अपने लिए प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं, चला रहा हूं और खुद अकेले सुनता हूं कार्यक्रम। हर एक सुनने वालों को और अपनी तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके रिएक्शन जो है और आज का दिन, ये पल, ये घड़ी हमारे साथ जो बिता रहे हो, संगीत और मनोरंजन जो चाहते हम उस पानी में, हर एक कोई चाहता है यही जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं दोस्तों। और जिंदगी जीते चले उसमें और क्या मेहरबान हम दे सकते हैं। आप ही से बतलाता चलूँ कि हम जो जीते हैं प्यार मोहब्बत में, आपस में मिलकर देते हुए एक दूजे के, एक दूजे कौन, एक दूजे जिसे कोई रिश्ता है या तो ये और इस सृष्टि में, संसार में और एक नए ब्रोकर है इस दुनिया के, उसके साथ मिलकर हंसी खुशी से वो बांटते चले और वो जो आप देंगे वही मिलेगा। मत भूलना, जो देना है तो दो और वही मिलेगा, जो करेंगे वही मिलेगा, कर्म इसे कहते हैं हमारी साथियों।

तो ये मैं कह दूं आपसे कि आज नहीं तो कल उसे भी ये एहसास हो जाएगा कि नसीब वालों को मिलते हैं फिकर, हाँ, फिकर करने वाले हमारे साथियों।

तो अकेला था तो अकेला है ये और बोल था इस संगीत की हमारे साथ। फिर भी जिंदगी में हम अकेले आए हैं ना, अकेले आए हैं, अकेले जी रहे हैं, अकेले फिर जाना है, कोई साथी नहीं। मिल जाता है साथी कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए, और जीवन साथी कोई अपना ढूंढ लेता है, मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति की नेम है ना। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई नजर आते हैं ना, क्या बात है बतलाओ।

तो यही तो मैं इस वक्त अपनी और मित्र दोस्त से सवाल कर रहा हूँ भैया रजेश बदलू से, कि भैया रजेश दोस्त की कोई बात बुरा लगे तो खामोश हो जाओ, अगर वो दोस्त है तो उसे उस बात का दुख होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं। सही गलत मुझे मालूम नहीं, भैया रजेश बदलू मुझे बतलाएगा।

साथियों, संगीत आप ही के नाम ने, ये जिंदगी है, वक्त गुजरेगा, हम बिखर जाएंगे, कौन जाने हम किधर जाएंगे, हम दोस्ती की परछाइयां है साथियों, जहां आप हुए तन्हा वहीं हम नजर आएंगे, तो यही ढूंढते रहना भैया राजेश बदलू जी।

0: यहाँ साथी हूँ। साथ जुड़े रहो और इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहो। आप जो फोन करते हो दमोदी को एक्स बदान के
1: इस कदर
0: हजूत में खुद है।

तो यूं ही आपसे ये बतलाता चलूं मैं कि तेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है, तेरी खुशी मेरी जान है, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी, बस इतना समझ ले कि तेरी दोस्ती ही मेरी शान है। क्यों?

प्यार भरा कोई दर्द भरा गीत गजल जिसको जो पसंद है हर एक को अपने अपने पसंद होता है ना हमारे साथियों और इसमें से

जिंदगी को तन्हा वीराने में रहने दो, या ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत में आजमाने से टूट जाते हैं दिल अक्सर साथियों, और ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत उसे किताबों में रहने दो ना।

ढी लिए हो तो चलना ही पड़ेगा ना, प्यार मोहब्बत में यही तो होता है, इश्क हो जाता है। तो क्या मैं कहूँ भैया, सिंपल जी भी प्रोग्राम सुने भाई, सिंपल आपको और हृदय से धन्यवाद। आंसू आ जाता है, रोने से पहले प्यार मोहब्बत करो ना, आंसू आ जाता है रोने से पहले, ख्वाब टूट जाता है सोने से पहले। लोग कहते हैं लोग कहते हैं, आजमाए आप नहीं, लोग कहते हैं मोहब्बत गुना है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, काश कोई रोक लेता इस होने से पहले। हाँ, अगर कोई रोक लेता इसे होने से पहले हमारे साथियों, तो मोहब्बत दुनिया कहाँ होता था, दुनिया कहाँ से कहाँ चला जाता। फिर भी यही थे, इसीलिए तो मोहब्बत होता है, प्यार होता है, इश्क होता है, और ये प्रकृति के मुड़ नतीम के नतूर के ये परम और मुड़ नतूर के कार्य है, अपना कार्य मुड़ नतूर तो करता है। वैसे नित्य वही मैं ऐसे सही नित्य अफवाह से डाती है व्यस्त हमारी साथियों दोस्तों, और जो है ये प्रकृति अपना वो नेम है ना, और परंपरा त्रादित्सिक रहो त्रादित्सिक रहो, जो करना है वो तो होता ही रहेगा। और जो आप सीखे हो शुरुआत से, जब से पैदा हुआ माँ पिता, जहाँ से प्रथम ये कहते हैं प्रथम गुरु वो माँ पिता, वो माँ होता है ना, फिर भी जाकर जो सीखते जिंदगी में काम में लाओ, और ये कभी कभी सुनते रहना।

यहाँ पर प्यार जो है, शब्दों में कहता हूँ कि प्यार तुझसे है बे इंतहा, एक पल के लिए भी तुझसे नहीं खोना है। हाँ, एक पल के लिए भी तुझे नहीं खोना है, इतना ज़रूरी तो मेरे लिए जीना भी नहीं जितना ज़रूरी है सिर्फ तेरा होना है। ये शब्दों में ये एहसास दिलाना है, आपको बतलाना है कि प्यार है, कितना प्यार है, लेकिन जब तक एहसास नहीं तो प्यार नहीं है।

आप जो हौसला देते हो फिर जैसे धन्यवाद तार करने के लिए भी। आज के प्रोग्राम में हमारे भैया सिंपल भी साथ दे रहे हैं। नाम उनकी अजीब है ना, फिर भी नाम ही क्या रखा है हमारे साथियों। और प्यार मोहब्बत जो होते हैं उसमें कहता रहता हूँ तेरा चेहरा आज भी मासूम है, आज भी हाँ मेरे चाहत में वही सुकून है तेरे चेहरे पे एक मुस्कान के लिए, जान भी वार दे ऐसा मेरे प्यार का जुनून है। हमारे दोस्तों यही है फाहुन की पहचान, आप हैं कि हिट सेशन द म्यूजिक सेशन, और अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ

कहते हैं लोग समय वक्त बदलता है नहीं, उसी तरह से दिन रात, उसी तरह से और सूरज चांद तहे साथियों, और जैसे सूरज उन दिनों निकलता था आज भी निकलता है, उसी तरह से उनकी जो है और जाकर ढलते हैं ना। तो प्यार के बाद जब होता है तो ये सदियों से जब से सृष्टि बना है, प्यार नहीं होता तो सृष्टि में आज इंसान भी कहाँ होते, सब कुछ वस्तु जो है। और आज का दिन जो है चला गया है आज तरक्की लेते करते करते, जहाँ व्हाट्सएप इंटरनेट, आप जानते हो क्या मैं आज के बारे में कुछ कहूँ आपको, तो यूं ही आपसे कहता हूँ बस एक बार, व्हाट्सएप के भैया सिंपल प्रोग्राम सुनते भैया नारायण डंकवेल, हर एक कोई जो हौसला देते हैं फोन करते हैं, ये लाइव आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है साथियों, बस एक बार करके एतबार लिख दो व्हाट्सएप पे ना, बस एक बार करके एतबार लिख दो कितना है मुझसे प्यार, लिख दो ना, कटती नहीं अब ये जिंदगी बिन तेरे, और कितना करूं इंतजार ये व्हाट्सएप पे और बयान कर दो प्यार।

और जबकि एहसास के बात होते हैं ना, तो ना जाने ये कैसी मोहब्बत है तुझसे, बात नहीं होती फिर भी दिल को फिकर बस तेरी है, यही तो कहते हैं। प्रणाम श्री मोहम्मद रफी साहब, सुमन कल्याणपुर, मधुर संगीत।

कलाकारों का तारीफ करते रहते हैं दोस्तों, और कहते हैं यही एहसास दिलाने के शब्दों है ना कि मेरी किस्मत में ना सही पर मेरे इस दिल में तो हमेशा तुम ही रहोगे। ये लोग भी कहते हैं एहसास दिलाने को, शब्दों तो शब्द होते हैं ना।

कहते हैं याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो।

लोग इसे चटनी कहते हैं। कैसा चटनी सोचते हो दोस्तों, बोलो आप कैसा चटनी? इसमें सब है, देवेंद्र सिंह, सविता सिंह, किसने कहा

मेरे साथियों, पाहुन पे चूर रहे ना, यही तो है ये रेडियो स्टेशन। इसीलिए

और फाहुन की कार्यक्रम में आप सुन रहे हमारे साथियों, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों। मैं आपका सेवक श्याम पूरे ना आपके साथ हूँ। और कभी कभी और कोई रहता है, जैसे कि देवेंद्र सिंह सिवनाथ जी भी साथ।

किस्मत से कभी कभी होते हैं। अपने भैया महान कलाकार दिग्विजय सिंह, कभी कभी मोती माला भोला सिंह ने

बाहु न्यूज रानी दयालु के प्रोग्राम हमेशा 24 घंटे लगातार आपको सुनाते हैं वही नगमे और यही सोच करके आपको पसंद आता हुआ होगा।

क्योंकि ये वक्त ये पल है घड़ी की। क्या घड़ी है? ये घड़ी गुजर रहा तो नहीं आएगा, गया एक बार, गया तो गया।

अरे वाह, मैं भैया कलाकार, मैं कहता हूँ अगर यकीन न करो तो यूं ही आजमाओ कि एक से एक बढ़कर कलाकार आप भी कलाकार हो।

इसी अवसर पर हमारे भैया सुरेन भगवान दिन जो इन लोगों के बधाई शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाँ तो हमारे भैया सुरेन क्या कहना है आपको?

फिर से एक बार नाचो गाओ झूमो, नाचो गाओ झूमे, यही तो है संगीत जिंदगी। और आपस में कुछ काम आते रहने

टूट जाए ख्वाब तो कोई आस क्या रखना भैया सुरेन, टूट जाए ख्वाब तो कोई आस क्या रखना, पलकों के भीगने को हिसाब क्या रखना। बस इसलिए मुस्कुरा देते हैं हम, हाँ बस इसलिए मुस्कुरा देते हैं हम अपने दुख से किसी को उदास क्या रखना, सोचते रहते हैं क्योंकि देवेंद्र सिंह।

फनफुनके हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आँच भी कमाल करती है, कैसे कैसे दिल से सवाल करती है, एक पल भी तन्हा होने नहीं देती, तेरी याद भी मेरा कितना हमारी साथ क्यों कितना ख्याल जो करती है।

इसीलिए जरा से मैं आपसे कह दूं कि कोई शाम आती है तेरी याद लेकर, कोई शाम जाती है तेरी याद देकर। मुझे तो इंतजार है उस शाम का जो आए तुझे अपने साथ लेकर, भैया देवेंद्र सिंह शिवनाथ।

या किसी को दिल से चाहना बुरा तो नहीं, किसी को दिल में बसाना बुरा तो नहीं। गुना होगा जमाने की नजर में तो क्या हुआ, हाँ गुना होगा जमाने के लिए तो क्या हुआ। जमाने वाले भी इंसान है, ये खुदा तो नहीं है हमारे साथियों, यूं ही

0: करोगे?
1: पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती, तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात जो है नहीं समझती ना।

या या ख्वाबों के दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए ना। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी के और जाकर आखिरी में होते गए।

इसी दरमियान आपसे कहता चलूं कि जो है सपना सपना ख्वाब जो होते हैं, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है तो हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही जो है सपना होता है। जगदीश सिंह जी,

तो दोस्तों यही आपसे बतला दूं कि मोहब्बत जो है क्या है, क्या है और क्या चीज है ना। समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज, चाहो तो जिंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो यही इसी को जन्नत जो जाकर कह देते हैं लोग ने हमारे साथ क्यों। और फाहुन आप तुने अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ आपके साथ जो दे रहा हूँ। के लिए मैं आपसे ये जरा से कह दूँ ना, यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी तुम्हारी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भुलाऊं मैं तुम्हें एक पल के लिए, तुम्हारी यादें भी हाँ तुम्हारे यादें ही मेरे जीने की वजह जो जाकर बन गई है। साथियों यूं ही सुनते रहना पावन के कार्यक्रम

तो साथियों यही तो होता है ना, प्यार करो तो यही मिलता है। ये पल भी ऐसा कि भुलाया ना जाए, याद तेरी आए पर किसको बताए ना जाए। प्यार तुझसे इतना कि तेरे सामने रोया ना जाए, पर दर्द इतना कि हंसा भी ना जाए। हाँ, और आगे में चलकर फिर भी दिल कहे तुझे भुलाया ना जाए।

बाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो बाहुंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 6320 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: जिंदगी के पांच कड़वे सच, जो कड़वे तो लगेंगे लेकिन है सच्चे। नंबर एक, माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई बिना मतलब के साथ नहीं देता। जब तक काम है तब तक साथ, वरना रास्ता अलग। नंबर दो, अच्छे इंसान को नहीं दिखावे वाले को ज्यादा इज्जत मिलती है। सच बोलने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। नंबर तीन, इंसान की नहीं उसकी जेब में पड़े पैसों की इज्जत होती है। गरीब चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई पूछता तक नहीं। नंबर चार, जिसे सबसे ज्यादा चाहोगे वही एक दिन सबसे बड़ा दर्द देगा। नंबर पाँच, रिश्ते नाते भी मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक अपनापन, वरना पहचान तक भूल जाते हैं। अगर बात से सहमत हो तो कमेंट में यश लिखो। और हाँ,
1: आप जितने भी अच्छे होंगे आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो ना तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। उन लोगों से दूरियां ही अच्छी हैं जिन्हें नजदीकियों की कोई कदर नहीं है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं चाहे उन्हें कितना भी बताओ कम ही लगता है। कभी किसी पर आंख बंद के भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखे। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं, क्या सिखाकर गया ये जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, ये वो गुनाह है जो बशर्त किया जाता है। तो गुजर जाए करीब से, वह भी मुलाकात से कम नहीं। जो हरगिज ना छोड़ी जाए वो आदत बन गए हो तुम। मिठास रिश्ते में छुपी होनी चाहिए। बातों में तो चाशनी कोई भी घोल देता है, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितनी मोहब्बत दो वो उतना ही दुख देते हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। अक्सर खास लोग ही खास दर्द दे जाते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठे बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आंखों से आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो परंतु आपको कोई समझने वाला ना हो। एक इंसान को आगे तो बढ़ जा सकता है मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। कितनी झूठी होती है मोहब्बत की कसमें। देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ।
2: आज का दौर बड़ा अजीब हो गया है। बड़े बड़े मकान हैं पर परिवार नहीं, डिग्रियां बहुत हैं पर तमीज नहीं, महंगी दवाइयां हैं पर सेहत नहीं, चांद तक पहुंच गए पर पड़ोसी का हाल नहीं जानते, पैसा खूब कमा रहे हैं पर सुकून नहीं, बुद्धि तेज हो गई है पर भावनाएं मर गई हैं, ज्ञान बहुत है पर समझदारी नहीं, रिश्ते बहुत हैं पर सच्चा प्यार नहीं, फेसबुक पर हजारों दोस्त हैं पर अपना कोई नहीं, इंसान बहुत है पर इंसानियत खत्म हो रही है, घड़ियां महंगी हो गई हैं पर किसी के पास समय नहीं। सोचने वाली बात है, सब कुछ पा लिया पर जो सबसे जरूरी था वही खो दिया, सुकून और अपनापन। अगर
3: तो रोशनी जी, प्रभु देवी जी खास करके जो साथ आप दे रहे हो आपके तार करने के लिए, मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो आप सुनना चाहते हो ज़रूर आपके नाम जो है ज़रूर से चलाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग दर्द जाने तो दर्द ना कौसा दर्द जो है ज़िंदगी में जो मिलता है जब प्यार करते हैं लोग, और ज़िंदगी में ये जोड़ा खास करके पति पत्नी मियाँ बीबी जैसे भी वो प्रिंस प्रिंसेस बनता है, और कितने के तो निभा जाते हैं, किस्मत तकदीर वाले की बात है, जो जिनकी नहीं निभाते हैं दोस्त और उसमें जुदाई होता है तो जो मिलता है दोस्तों। तो जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते दोस्तों। हमारे मित्रों ना अजनबी जी, जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते, और जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं वो दर्द

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे।

साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ। मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मान फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में एरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवें में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वालों बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। आचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोग के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता, सुनने वालों अशुभ होता है, ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे। जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है, सुनने वालों उबकाई आने लगे। जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है। जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है, सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो। जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है, सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूता उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गायें हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार। सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश हम सब प्रारंभ करने वाले हैं। और आज फिर हम सब उपस्थित हो गए स्टूडियो में, स्टूडियो में जो शांता जी भी उपस्थित है और बबली जी भी साथ दे रहे हैं हमारे साथ। पनील के पीछे जो हर सप्ताह बैठ रहे हैं वो भी अभी आने वाले हैं। शांता जी, आपके एंट्री हो जाए तो आज का विषय की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं।
1: ने संजय जी ने कहा तो हम आपको भी हार्दिक से स्वागत कर रही हूँ और आपको मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो हम सबके है तो हम उस ओर बढ़ने वाले हैं कि भारत देश में लोग और जा कर के वहाँ से हमारे कल्चर जो हमारे हिंदुत्व है और उसमें कितने कितने प्रकार के सुंदर सुंदर गीत के साथ और कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भारत देश में। शांता जी, आपको पता है कि कितने अवभाषा चल रहा है?
1: बहुत से है, बाकी आंताल है, आंताल वेदिक नहीं सो प्रसिस नहीं।
0: नो ऑफ फेर चल वेल व्हाट एक हैव कुन वरनेमन 415 talen in India, waarvan er 24 officiële talen in India। शांता जी, ये बात है कि 24 भाषाओं जो ऑफिशियल है और वो आप खास करके देख सकते हैं जो हमारे नोट होते ना भारत के नोट पे, तो उस पे ध्यान देना कि उस पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा भाषा उस पे और वहाँ पर लिखा हुआ है।
1: अच्छा,
0: हिंदी, पंजाबी, ऐसे कई कई कितने भाषा है। पर उस ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ने वाले हैं। वो गीत का बोल क्या है शांता जी, आप ही अनाउंस कीजिए।
1: हाँ जी, तो जैसे प्रति सप्ताह के दिन हरदम, आज तो आएगा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: तारा जैसे हम अभी आपने गीत सुने तो ये नहीं है जैसा हमारे संजय जी ने कहा कि एक चांद या एक सितारा है
1: जी। मैंने हर बार यही समझता था शांता जी कि एक तारा बोले तो ये, पर ये आपको मोहम्मद रफी जी के बारे में भी कुछ है इसका संदेश था।
0: जैसे मोहम्मद रफी जी ने उसका इतिहास है तो वो जो छोटा बच्चा था ऐसे ही फकीर जा रहे थे तो वो हरदम उनके साथ ऐसे उनके पास खींचते चले थे तो कितनी दूर तक। और मुझे तो वही से तो मुझे भी पता चला कि एक तारा एक इंस्ट्रूमेंट है।
2: क्योंकि एक तारा मेरे हिसाब से एक तारा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें एक ही तार होती है
0: जी,
2: और इसीलिए उसको उसका नाम एक तारा
0: है। हाँ जी
1: दोस्तों सुनने वालों, जैसे कि आप सुन रहे हैं श्रीमान बेई जी जो अगले और हाइकन शहर से हम सब के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत देश से जुड़े हैं और यहाँ हम सबको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटन एक तारा के बारे में और जा कर के सुनाए। तो शायद मैं सिर्फ ऐसा नहीं हो कि शायद मैं ही नहीं पहचानते होंगे एक तारा को, पर एक तारा का पता भी आज चल गया। तो मैंने बेई जी वतवार द अंदर इंस्ट्रूमेंटन
3: वत एन एल bijzonder instrument is in de muziek, dat is de kamok. Die vind ik zelf dat vind ik een prachtig instrument. Het is ook een trommeltje die ze onder hun arm hebben met twee snaren, die dan weer verbonden is met een heel klein trommeltje die ze in de hand hebben. En dan kunnen zij met een soort plectrum, wat gemaakt is van een buffelhoorn, spelen ze dan op die snaren en dat geeft een soort golvend geluid. Een beetje, het is een beetje, het is een hele mysterieus geluid eigenlijk. En dat is de kamok. Verder spelen ze vaak op de dotara. Dat is een soort luid.
0: Ja.
1: Heel eventjes, want ik wil toch nog iets meer over de instrumenten graag. Want ik neem aan dat u ook zoiets hebt meegenomen vanuit India. En Babli had ook wat gegevens over de ektara. Babli, wat wist jij van wat meneer B. net vertelde over de ektara? Kan je dat nog meer in het Hindi vertellen?
2: Hanji, zeker. Ektara ek taat vaadya hota hai. Baans ke oopar ek khooti gaad kar, us par taar ko kas diya jata hai. इसी तार को छेड़कर विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। एक तारे का प्रयोग ज़्यादातर भजन और सुगम संगीत में होता है। बंगाल और बिहार में प्रचलित एक तारा का निम्न भाग काठ या चमड़े से मड़ा होता है, लेकिन वह नीचे से चौड़ा होता है।
3: Ja, dus naast de ektara is een hele typische bouwinstrument is de kamok. En dat is eigenlijk een instrument waarbij ze een soort trommel hebben met een vel aan de onderkant, wat verbonden is met twee snaren met nog een klein trommeltje die ze in hun hand hebben. En door aan dit handvat te trekken kunnen ze de spanning op de snaren variëren, waardoor je een hele mysterieus golvend geluid krijgt. En dat is echt een heel typerende instrument wat je in geen enkele andere land of muziekstijl eigenlijk tegenkomt. En ik heb, dat loop ik een beetje vooruit. Toen zij in Nederland waren, toen hebben zij in een van de optredens heb ik een opname van waarin ze eigenlijk een soort solo op dat instrument geven. En dat is echt, onbegrijpelijk wat voor de snelheid waarmee ze daarop spelen, wat voor geluiden eruit komt. Dat is voor mij dat kippenvel muziek.
1: Oké, en heeft u ook een, heeft u misschien voor ons een fragmentje van liggen die wij ook kunnen beluisteren?
3: Ja, die

0: तारे।
1: जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसे हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। दिल समुंदर जैसा रखना, नदियाँ खुद ही मिलने आएंगी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आ जाते हैं, तब तक लौटने को वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम जो हम सब संदेश रखे कि जो फकीर होते हैं, जो गीत गाते रहते हैं और हम भारत में जाते हैं तो हम शायद नहीं जानते थे, पर आज उसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुआ। तो आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए श्रीमान बेई दैग जी हैकन शहर से, शांता खेमय जी बबली आसरा जी और मैं हूँ सेवक संजय। आशा ये रखता हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुछ न कुछ सुंदर संदेश ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश से आपको जरूर मिला होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।